0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुहिदे पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के मकसद से बज़ाहिर आखिरी लम्हात की मुशावरत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात में शामिल ममालिक के रहनुमाओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की और सालिस पाकिस्तान शामिल थे। दोनों अतराफ के ज़राए इब्लाग के इदारे मुफाहमत की याददाश्त के मुंदरजात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज पर लिबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई खत्म करने और ईरानी खाम तेल और दीगर बरामदात पर से पाबंदियां आर्जी तौर पर हटाने की शिकें शामिल हैं, जबकि बातचीत जारी है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी और आबनाए हुरमत से मुतालिक मसाइल के लिए 30 दिन मखसूस किए जाएंगे। जोहरी मामले पर मुजाकरात के लिए इसके मुतवाजी 60 दिन मुख्तस किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीका और सालसी करने वाले ममालिक के हुक्काम के हवाले से कहा है कि ट्रंप एक ऐसे मुहाइदे को कबूल करने के करीब हैं जिससे वॉशिंगटन और तेहरान को हतमी मुहाइदे तक पहुंचने के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा। अहदेदारों ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इस मुद्दत में 1 माह की तौसी की जा सकती है। न्यूज वेबसाइट ऑक्सियस ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत करेंगे जो 60 दिन तक के लिए होगी। इत्तलात के मुताबिक अहदेदार ने कहा कि आबनाए हुरमस इस मुद्दत के दौरान बगैर किसी महसूल के खुली रहेगी। इसके इवज अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर से अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा और तेहरान को आजादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए पाबंदियों में कुछ छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि अगर याददाश्त पर दस्तखत हो जाएं तब भी ईरान आबनाए हुरमस पर कंट्रोल जारी रखने का इरादा रखता है। ज़राए इब्लाग ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। ऑक्सियस के मुताबिक याददाश्त के मुसवदे में कहा गया है कि तेहरान कभी भी जौहरी हथियार रखने की कोशिश नहीं करेगा और यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के लिए अपने जखायर को संभालने के तरीके पर बातचीत करेगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म के इकदाम को कबूल नहीं किया। न्यूज एजेंसी का यह भी कहना है कि ईरान मुंजमिद असासों को जारी करने का मुतालबा कर रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमले में कीव और दीगर मकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत की है। उनका कहना है कि रूसी अफवाज ने ओरेशिंग का इस्तेमाल किया जो उनका जदीद तरीन दरमियानी फासले तक मार करने वाला बिलिस्टिक मिसाइल है। यूक्रेन की फजाइया ने ऐलान किया कि यह हमला इतवार की सुबह तक किया गया। हुकाम ने इत्तला दी है कि दारुल हुकूमत कीव में 2 अफराद हलाक और 78 जख्मी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 अफराद दारुल हुकूमत के गिर्द वाके कीव खित्ते में मारे गए। एक रिहायशी ने एनएचके को बताया कि उन्हें जो कुछ भी मिला वो उसे लेकर पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सबवे स्टेशन पर चली गई। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहला मौका था जब उन्हें इतने तवील और खौफनाक हमले का तजर्बा हुआ। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम पोस्ट किया। उनका कहना था कि रूस ने दारुल हुकूमत से 80 किलोमीटर जनूब में कीव खित्ते के कस्बे की जानिब ओरेशिंग दागा था। कहा जाता है कि रूस के इस जदीद तरीन मिसाइल को रोकना मुश्किल है।
1: और अब आज की अहम खबरों की 6 सुर्खियां। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात में पेशरफ्त की तवक्को पर टोक्यो का कलीदी मियारी इशारिया पीर को पहली बार 65,000 की बुलंदी तक जा पहुंचा। اگلے ماہ جاپان سے لانچ کیے جانے والے H3 راکٹ کا مرکزی حصہ اتوار کے روز میڈیا کو دکھایا گیا اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والا خام تیل کا ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
1: अब आप मजीद जो करना चाहते हैं उनके बारे में बताने की मशक कीजिए। मसलन आप क्योटो के किंकाकुजी मंदिर जाना चाहते हैं। मंदिर के नाम का तलफ्फुज़ है
0: किंकाकुजी, किंकाकुजी।
1: और जाना है
0: इकिमास, इकिमास।
1: मैं किंकाकुजी जाऊंगा, ये जापानी तो होगी, किंकाकुजी नी इकिमास। अब आप बताएं मैं किंकाकुजी जाना चाहता हूं को क्या कहेंगे?
2: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
1: अगर आप किसी के लिए तोहफे के तौर पर गर्मियों का हल्का किमोनो युकाता खरीदना चाहते हैं तो ये किस तरह कहेंगे? युकाता का दुरुस्त तलफ्फुज़ है
0: युकाता, युकाता।
1: और खरीदने को कहते हैं
0: काइमास, काइमास।
1: तो सामीन कोशिश करें,
2: युकाता का काइताई देस, युकाता का काइताई देस।
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मियां ने ताम से उस वक्त कहा था जब ताम का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसे इसी तरह याद कर लें।
4: दाइजोबु,
1: दाइजोबु यानी क्या तुम ठीक हो, मुखातिब के बारे में फिक्रमंदी का इजहार है। शाइस्ता अंदाज में इसे कहेंगे दाइजोबु दिसका। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप ठीक हैं और आप कहना चाहें मैं ठीक हूँ तो यूं कहेंगे
0: दाइजोबु दिस, दाइजोबु दिस।
3: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुने।
5: दाइजोबु,
6: दाइजोबु,
7: दाइजोबु।
3: सामीन अब आपकी से दोहराने की बारी है।
0: दाइजोबु।
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए। उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें ताम अपने आइंदा के इरादों का इजहार करती है।
8: निहोन नी वा नारेमाश्ता का?
9: हाय।
8: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
9: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
8: 北海道いいね。
9: あと友達に会いたいです。
8: おや
9: 大丈夫、顔が赤いよ。
8: 春さんの知恵袋。
3: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज के मकालमे का मकाम हारूसान हाउस की बैठक है। इस मुनासबत से जापानी घरों और तर्ज जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
1: कमरों की तादाद और उनकी तरतीब के लिहाज से तो हर घर मुख्तलिफ होता है, लेकिन जापानी घरों में बुनियादी तौर पर दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी तर्ज के कमरे और मगरबी तर्ज के कमरे। मगरबी तर्ज के कमरों में लकड़ी का फर्श या कालीन बिछा फर्श होता है। इनमें आमतौर पर मेज कुर्सियाँ वगैरह इस्तेमाल होती हैं, जबकि जापानी तर्ज के कमरों में सरकंडों की बनी हुई मोटी चटाई ततामी का फर्श होता है और कमरे में नीची मेज होती है। अहले खाना मेज के गिर्द फर्श पर जाबुतोन कहलाने वाले कुशन रखकर बैठते हैं।
3: अनवर साहब, जापानी तर्ज के कमरों में रात को सोने के लिए ततामी पर बराह रास्त बिस्तर बिछाए जाते हैं जिन्हें फुतोन कहा जाता है, ऐसा ही है ना?
1: जी हाँ, लेकिन आजकल अपार्टमेंट्स आम होने और लोगों का तर्ज जिंदगी तब्दील होने की वजह से अब जापानी घरों में मगरबी तर्ज के कमरे आम हैं। तहम कई घरों में दोनों तर्ज के कमरे होते हैं। इनमें कम से कम एक ततामी वाला यानी जापानी तर्ज का कमरा होता है।
3: ततामी वाले कमरे में रहने का तसव्वुर भी काफी अच्छा मालूम होता है।
1: जी बिल्कुल। वैसे मगरबी या जापानी तर्ज से कतई नजर जापान में घरों में दाखिल होते ही जूते उतार दिए जाते हैं। घरों के अंदर अक्सर स्लीपर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जापानी तर्ज के कमरे में दाखिल होते वक्त वो भी उतार दिए जाते हैं। सरकंडों से बनी ततामी पर नंगे पैर चलना बहुत आरामदेह महसूस होता है। सरकंडों की खुशबू भी सुकून बख्श होती है।

Abadie. हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 मई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सक्कू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति की उम्मीदों के चलते टोक्यो का मानक सूचकांक सोमवार को पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार कर गया। निक्केई 225 सूचकांक शुक्रवार के मुकाबले कुछ समय के लिए 3.2% यानी करीब 2,000 अंक बढ़ा। सूचकांक ने एक दिन के कारोबार में पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार किया। बाजार खुलने के तुरंत बाद विशेषकर सेमीकंडक्टर संबंधित शेयरों की लिवाली हुई। ऐसा शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट में आई तेजी के बाद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। न्यूयॉर्क में भावी सौदों का WTI मानक सूचकांक रविवार को एक समय करीब $91 प्रति बैरल तक लुढ़का, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग 5% की गिरावट है। दिन के अंत में निक्केई सूचकांक सर्वोच्च 65,158 पर बंद हुआ, जो रविवार से लगभग 3% अधिक है। जापान में 10 जून को प्रक्षेपित किए जाने वाले H-3 रॉकेट का मुख्य भाग रविवार को मीडिया को दिखाया गया। दक्षिण पश्चिमी जापान के कागोशिमा प्रीफेक्चर स्थित तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र के एक विनिर्माण भवन में प्रक्षेपण की तैयारियां चल रही हैं। छठा H-3 रॉकेट टाइप 30 नामक एक नया प्रायोगिक यान है, जिसमें बूस्टर का उपयोग नहीं होगा। इसके पहले चरण में तरल ईंधन वाले 3 मुख्य इंजन हैं, जो पिछले मॉडलों की तुलना में एक अधिक है। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा का कहना है कि बूस्टर के बिना तरल ईंधन वाले एक बड़े रॉकेट को प्रक्षेपित करने का ये जापान का पहला प्रयास होगा। कच्चे तेल से भरा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से होते हुए जापान पहुंच गया है। इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से जापानी प्रबंधन वाला ये पहला तेल टैंकर है जिसने ये जलमार्ग पार किया है। प्रमुख तेल थोक विक्रेता इदेमित्सु कोसान की एक सहायक कंपनी पनामा के ध्वज वाले इदेमित्सु मारू जहाज का प्रबंधन करती है। ये जहाज सोमवार सुबह मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रीफेक्चर स्थित एक केंद्र पर पहुंचा। सूत्रों के अनुसार जहाज पर चालक दल के 3 जापानी सदस्य सवार थे, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। कंपनी के अनुसार इस टैंकर में सऊदी अरब से लगभग 20 लाख बैरल तेल लाया गया है, जिससे एक रिफाइनरी में पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाएंगे।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से संभवतः अंतिम चर्चा कर रहे हैं। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने वार्ता में शामिल देशों के नेताओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और मध्यस्थ पाकिस्तान शामिल हैं। दोनों पक्षों के मीडिया केंद्र समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु की खबर दे रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने और वार्ता जारी रखते हुए ईरानी कच्चे तेल तथा अन्य निर्यातों पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के प्रावधान शामिल हैं। उसका यह भी कहना है कि अमरीकी समुद्री नाकाबंदी और होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित मुद्दों के लिए 30 दिन तथा परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए समानांतर रूप से 60 दिन निर्धारित किए जाने चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका और मध्यस्थ देशों के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप एक ऐसे समझौते को स्वीकार करने के करीब हैं जिसके

0: तहत वॉशिंगटन और तेहरान को अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इस समय सीमा को 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने एक अमरीकी अधिकारी के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन और तेहरान 60 दिनों की अवधि वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि इस अवधि के दौरान होर्मुज़ जलडमरू मध्य बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा। इसके बदले में अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटा लेगा और तेहरान को स्वतंत्र रूप से तेल बेचने की अनुमति देने के लिए कुछ प्रतिबंधों में छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बावजूद ईरान होर्मुज़ पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम को लेकर मीडिया में अलग-अलग खबरें सामने आ रही हैं। एक्सियोस के अनुसार समझौते के मसौदा ज्ञापन में कहा गया है कि तेहरान कभी भी परमाणु हथियार रखने का प्रयास नहीं करेगा और यूरेनियम संवर्धन को रोकने तथा अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार से निपटने के तरीके पर बातचीत करेगा। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित किसी भी उपाय को स्वीकार नहीं किया है। एजेंसी का ये भी कहना है कि ईरान अपनी जब्त की गई परिसंपत्तियों को छुड़वाना चाहता है। यूक्रेन पर किए गए रूस के एक बड़े हमले में कीव और अन्य जगहों पर 4 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए बताया कि रूसी सेना ने इसमें मध्यम दूरी की अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार यह हमला रविवार सुबह तक जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी कीव में 2 लोगों की मौत हो गई और 78 घायल हो गए। उनके अनुसार राजधानी के आसपास के कीव क्षेत्र में भी 2 लोग मारे गए हैं। एक निवासी ने एनएचके को बताया कि उसके हाथ जो भी लगा उसे उठाते हुए वो एक मेट्रो स्टेशन की ओर भागी जिसे आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। महिला ने बताया कि उसने पहली बार इतना लंबा और भयावह हमला देखा। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस ने राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में कीव क्षेत्र के एक नगर की ओर ओरेशनिक मिसाइल दागी है। रूस की इस नई मिसाइल को रोकना मुश्किल बताया जा रहा है। उत्तरी फिलीपींस में पुलिस और आपातकर्मी एक ढही हुई इमारत के मलबे में फंसे 10 से अधिक लोगों की तलाश कर रहे हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मध्यवर्ती क्षेत्र लूजोन के पम्पांगा प्रांत में एक निर्माणाधीन 9 मंजिला इमारत रविवार तड़के करीब 3 बजे ढह गई। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि 26 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में एक मलेशियाई नागरिक भी शामिल है जो पास के ही एक होटल में ठहरा हुआ था जो मलबे के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।